0: रेडियो भेरी एफएम 98.6 व्यक्ति 2.7 मेगाहर्ज
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजेको छ.
2: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

नेपाल पेक्युबार में आवत हुई क्लग आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाह वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग एप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट एप मन से नेपाल पेक्युबार में सहजिल से भुगतानी पाए नेपाल पेक्युबार नेपाल के अपने क्यूआर।

0: क्यूआर संगे
1: नेपाल पे क्यूआर में आवत हुई क्लॉक आज अपन बैंक वित्तीय संस्था चाहे वॉलेट में संपर्क करी मोबाइल बैंकिंग ऐप वॉलेट कनेक्ट आईपीएस ओ इंटरनेशनल पेमेंट ऐप मन से नेपाल पे क्यूआर में सहजील से भुगतानी पाए नेपाल पे क्यूआर नेपाल के अपने क्यूआर

सम्पर्क कर्णाली प्रदेश पुनस्थापना केन्द्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नम्बर 1 चनाबारी सुर्खेत। सम्पर्क फोन नम्बर 083-590-038, मोबाइल 98-578-20935, 98-682-29-133 र 98-55-55-606।